साचे नाम की तिल वडियाई आकत के कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखण पाहे वड्डा न होवे घाट न जाए ना ओ मरे ना होवे सोग देंदा रहे ना चुके भोग गुणे हो और नाही कोए ना को हो आनान को हो जे वड्याप ते वड़ तेरी दात जिंदन करके कीती रात कसम सारे ते कमजात नानक नावे बासनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सकाई हर कीर्त हमरी रह रास रहाओ हर

जनन पिता लोक सदबंता कोई न किसकी धरिया सिर सिर समाहे ठाकर काहे मन भो करिया उड़े उड़ा वैसा कोसा तिस पाछे वचरे शरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकर करतल धरिया

सोपुरखल एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोपुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर अगमागम पारा सब त्यावो सब त्यावे सब त्यावे तुझी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो सं

तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हरे को पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद बिने अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आप खाना जो सेवै तुझी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुझी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पै जिन हर त्याया जी तिन टूटी जमकी फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिनका पौ सब गुवासी जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर रूस मासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडाल जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहिन तुझी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पड़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खड कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जे बड़े अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुदे आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई तुदे आपे सिष्ट सब पाई जी तुदे आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जन होई आसा महला चौथा

के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो

आदि अंत एक कह अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सुवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो शत्रन को फल मोहबद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृश कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी

दुख ना तसे व्याप्त कोई अड़ल। सुने गुंग जो जाए सुरस ना पावे, सुने मूड़ चित लाए चतरता आवे। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहे, हो जो जाकी एक बार चौपई को के चौपई। सम्मत सत्रह सहस पुणित जय अर्ध सहस पुन तीन कहे जय भाद्र सुधी अष्टम रविवार तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्रोपख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संबंधे 405 चरित्र समाप्त।

जो निज ब्रह्मो सो कहा सो कहो जग माहे, जो ते प्रभु को त्याय हैं अंत स्वरूप को जाहे। दोहरा हर हर जन दुई एक है बिब विचार किशनाए, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाहे। दोहरा जब इस प्रभु को पियो जन्म तेरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूं कह सुनाए। कवेवाच दोहरा ठाट पियो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याए, पंथ चले

सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सत

जी न जाई नित नित राखो रारो। तुम संसार चरण लगतरिये सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाई मैनू जो कितोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाहीं आपे तरस पियो। तरस पिया मैं रामत होई सतगुर सज्ज

जैस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

करे। संसार भव जल क्यों तरै, गुरमुख नाम निरंजन पाइय, अफरियो पार अफार टरै। रहाउ ते गुण विसर गए अपराधी, मैं बौरा क्या करूं। हरे तू दाता दयाल सबै सिर, एहन सदात समार करी।

छीन खरे तन तन बिन सह सहजे सहसा फिर पछतावे मुख तूर परे बिरद भया जोबन तन खिसिया कफ कंठ बिरू धो नैनो नीर टरे चरन रहे कर कंपन लागे साकत राम नरदा हरे सुरत गई काली हूं तवले किसे न भावे रखे ओ करे।

0: काल कलेश लोभ मोह महापवज तारे राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
1: सतगुरु दा पाया सहज सेती मन वजिया वादाया
0: राग रतन परिवार परियां शब्द गावन आईया
1: जदूत गावो हरी के राम जनी वसाया
0: कहे नानक आनंद हो।

0: नानक सच्चे साहेब क्या नाही करते रह सचा नाम मेरा आधारो
1: सच नाम आधार मेरा जन भुखा सा भुगवाइया
0: कर शांत सुख मन आए बसिया जन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान
1: किता गुर बेटो जिस दिया ए बड़े आईया
0: कहे नानक सुनो संतो शब्द तर हो प्यारो सचा नाम मेरा आधारो बचे
1: पांच शब्द

सो कहो टल गुर सेविया एहन सहज सुभाए दर्शन प्रसियाए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम।

एक शब्द लेवलाए नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिर है जो हर हृदय सदा बसाए।

फिरह जो हर हृदय सदा बसाए। बिन सतगुर नाहो ना पाइये बुझो कर विचार। नानक पूरा भाग सतगुर मिलै सुख पाए जुग चार। महला तीजा। क्या गबरू क्या बिरद है मनमुख तृष्णा भुख ना जाए।

जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ध्याए दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रबा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुर

श्लोक एक ओंकार सदगुरु प्रसाद आद गुरे नम है जुगाद गुरे नम है सात गुरे नम है श्री गुरुदेव नम है अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो काल कलेह तन माह मिटावो काल कलेस तन माहि मिटावो सिमरो जाप संपर एक नाम जबते अगंते अनेक

संग मोहे उदाहरो सुखमनी सोखे अमृत प्रभ नाम भगत जना कह मन विश्राम रहाउ प्रभ कह सिमरन गर्भ ना बसे प्रभ कह सिमरन दुख जम नसे प्रभ कह सिमरन काल पर हरे प्रभ कह सिमरन दुश्मन टरे प्रभ सिमरत कछ

हर रंग प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु के सिमरन जब तब पूजा प्रभु के सिमरन बिनसै दूजा प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु के सिमरन दरगह मानी प्रभु के सिमरन होए सुफला प्रभु के सिमरन सुफल फला से सिमरह जन आप सिमराय नानक ताकै लागो पाए प्रभु का सिमरन सब ते ऊचा प्रभु कै सिमरन उदरै मूचा प्रभु कै सिमरन त्रिसना बुझै प्रभु कै सिमरन सब कह सुजै प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माह समाए प्रभु जी बस साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु कव

दीन दर्द भंजना घड़ घड़ नाथ अनाथ सरन तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुदमीत न पाई मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई जय महापयाण दूत जम दलय तह केवल नाम संग तेरा चलय जय मुस्कल होवे अत भारी हर को नाम किन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरे हर को नाम गोड पाव पर हरे गुरमुख नाम जप मन मेरे नानक पाव सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाह करोरी बंधन परे हर का नाम जपत निह तरे अनक माया रंग तेख नाम बुझावे हर का नाम जपत आगावे जेह मार गे जाते अकेला तहर नाम संग हो तो सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याये नान गुरमुख परम गत पाइये छूटत नहीं कोट लाख बाही नाम जपत तह पार पराही

पावे देह प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे त्याय सदा मणि अंदर देह प्रसाद गृह संग सुख बसना आड़ पैर सिम रहो तिस रसना देह प्रसाद।

रघुनाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोय जो जो कहे सो मुक्ता हो सुनमिता नानक बिनवंता साधना की अदरज कथा अष्टपदी साध के संग मुख उजल हो।

ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञानी एक सांग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जैसे करे प्रभया, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी का बाल बाल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माह, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कसे न जा

का तनि श्लोक उतार जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानको अपरस सगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या।

नयावे वेद प्राण सिमरत बूझे मूल सुख मह जान अस्थूल चहु वरना कौ देव देश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहु वरना मह जपै को नाम जो जो जपै।

सारस्वती कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार विहारी कई कोट पैतीर्थवासी कई कोट बन ब्रह्म उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते

कई कोड़ परदेश परमाह जित जित लावो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना। कई कोड़ सिद्ध जति जोगी कई कोड़ राजे रस भोगी कई कोड़ पंखी सर पे उपाय कई कोड़ पाथर वृख ने बजाए कई कोड़ पवन पानी बसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोड़ ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दान इंद्र सिर शत्र

संते कई कोट दर्शन प्राप्या तिन को मिले हो प्रभ अविनाश कई कोट मांग है सत संग पार ब्रह्म तिन लांगा रंग जिन कहो हे आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा तन तन।

पीवे, अमर पह सत सद ही जीवे, कई कोड़ नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सह समावे, अपने जन को साथ साथ सुमारे, नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक, कारण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई, नानक तिस बलिहार ने, जल सल महियल सोए अष्टपदी।

अंश उठाए। सैस खटे लाख कवठ तावे, त्रिपत नावे माया पाछे पावे। अनक भोग भिख्या के करे नह त्रिपतावे, खाप खाव मरे। बिना संतोष नहीं को राज, स्वप्न मनोरथ वृथ सब काज। नाम रंग सर्व सुख हो बड़े भागी।

कहे सब कोई मुख उदर हर दर गए सोए इहो व्यापार विरला व्यापारी नानक ता कह सद बलिहारी चरण साध के तो ए तो हे पियो और प्रसाद को अपना जियो साध के तो हुर करो स्नान साधु पर जाइये कुर्बान साह सेवा बड़ भागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये अनक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाये अमृत रस चाखे ओट गही संत दरियाया सर्व सुख नानक तेह पायो मृतक कह जीवालन हार भूखे को देवते आधार सर्वन दान।

अर्थात मानस जतन कर्तव्य पात तिसके कर्तव्य व्यर्थे जात मारे न राखे अवरन कोई सिर्फ जिया का राखा सोए काहे सोज करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलाखी डानी बारंबार बार प्रभ जपिये पी अमृत हो मन तन त्रपिये नाम रतन जिन गुरु मुख पाया तिस के शबर नाई दृष्टाय

सेवक कहे कार्य रास, सेवा करत होए देह काम ही तस को होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा निसाव करे नानक सो सेवक गुर की मत ले।

मीत सो सुख साधु संग प्रीत जे सोभा को करह परिकरणी सासुभा बजहर की सरणियन की पावी रोग न जाय रोग मिटै हर अवखद लाय सर्वन दान मह हर नाम निधान जप नानक दर गए परवान।

मिश्राम सुन समाद अणह तैनाद कह न जाइया चरित विसमाद तिन देखिया जे साफ दिखाए नानक ते जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट ब्याप रहया भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंतन प्रभित है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पान ही बैसंतर माहे चार कुंट दिद से समाज तहते बिहनई कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत मैं देख ससी अर सूर ने खेत्र मैग बाणी प्रभु की सबको बोले आप ये डोल न कबू डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाए गुरे मोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत धार रहे हो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद प्रभु का नाम नानक दिन मैं हो विश्वास

जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक सी पी सच सुचाए सोच न हो भई जे सोची लखबार छुपै चुप न हो भई जे लाए रहा लिवतार।

सोड़कोड़क पाल थके वेद गहन कवात सहस अठारह गहन गतेबा असुरिकतात लेखा है लिखिया लेखे है विनाश नानक बड़ा आखी आपे जाने आप सालाही सालाही अति सुरतना पाहिया नदियां ते वाह पवे समुद्रा जानिए समुद्र शाह सुल्तान गिरह सेती माल धन कीड़ी तुलना हो बनी जेत मनो ना विसरह है।

अनाद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक होवेस। आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका बार कर कर वेख सरजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको बेस। एक दूजी भाव लखों है लखों में लख बीस लख लगेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश। एत राह पद पावड़िया चढ़िए हुए अकीस सुन गलना आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरी पाइय कूड़ी कूड़ा ठीस आखन जोर चुपै न जोर जोर ना मंगण देड़ा जोर जोर ना जीवन वर्ण है जोर जोर ना राज माल मनसोर। जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटा संसार। सत जोर कर वेखै सोहे नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती तिथी वार पवनी पवन पानी अग्नि पातार। तिसवी धरती थाप रखी धर्मसाल तिसवी जी जुगत गए रंग तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। तथा सोहन पांच प्रवान नदरी करम भवै निशान। कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म। केते पमन पाणी वाय संतर केते कान महेश। केत्या कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश। केते सिद्ध बोधनाथ केते केते देवी बेस। केते देव दान मुन केते केते रतन समुंद। केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरेंद। कितिया सुरती सेव किते नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड। तिथे नाद विनोद कूट आनंद सरम खंड की बाणी रूप। तिथे घाट घड़िए बहुत अनुमता किया गल्ला कथिया ना जाए। जेको कह पिछा पछताए। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध। तिथे घड़िए सुरा सिद्धा की शुद्ध। कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर। तिथे जूद महाबलसूर तिन मह राम रहे अभरपूर। तिथे सीतो सीता मह

दर्शन कहताई। चखड़ झागी मीह बरसै पी गुर देखण जाई। समुद सागर हो वै बोखारा गुरसिख लंघ गुर पै जाही। जो प्राणी जल मिल जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई। जो धरती सोभ करे जल बरसे त्यों सिख गुर मिल बिगसाई। सेवक का हुए सेवक वर्ता कर कर बिनो बुलाई। नानक की बेनंती हर पह गुर मिल गुर सुख पाई। तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझे त्याई। जो तुद सेवै सो तू है हो मैं तुद सेवक पैज रखाई। भंडार भरे भगती हर तेरे जिस भावै तिस देवाई। जिस तू दे सोई जन पाए होर नेफल सब चतुराई। सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाई। एक दान मंगे नानक बेचारा हर दासन दास कराई। जे गुर झिड़के ता मीठा लागे जे बख्शे ता गुर बड़ियाई। गुरमुख बोले सो थाए पाए मन मुकिश थाए ना पाई। पाड़ा ककर बर्फ बरसै गुरसिख गुर देखण जाई। सब दिन सरैण देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण गुर भावे सो थाए पाई। रैण दिन गुर चरण अराधी दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल।

और चाकर लगे चाकरी जिस चले किसमें पाए हुरमत सुनोगली ओह जब दूड़ा खाए खसमें कर बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजह गवाए गला मोह मोह पाना खाए जिस दर ता खामना तिसके सब स्नान को।

और नानक अंतर जपनी हरता के परवार आप करे शक्ति पर आप करे मारिक नगली जंजीरियां उतर चढ़े बिछियार आप करे करे आप हो कैसे करे पुकार नानक करना जिनकी फिरत।

जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवों।

राम सिमर राम सिमर एह तेरा काज है, माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है, रहाओ सुपने ज्यों धन पछान काहे पर करत मान। बारू की भीत जैसे बसदा को राज है, नानक जन कहत बात बिन सजह तेरो गात। छिन छिन

ज्यों भावै त्यों निर्जास। जिय रै राम जबत मन मान, अंतर लागी जल बुझी पाया गुरमुख ज्ञान रहाउ। अंतर की गत जानिए गुर मिलिए संके उतार, मोया जित घर जाइए तित जीवन दिया मर मार। अनहद शब्द सुहावने पाइये गुर विचार, अनहद बाणी पाइये होमे होए विनाश। सतगुर सेवे आपना हौ सतगुर बाणी तास, खड़ दरगे पहनाइए मुखर नाम निवास। जय देखा तय रब रह सब शक्ति का मेल, त्रै गुण बंदी दोहरी जो आया जग सो खेल। भजोगी दुख विछड़े मनमुख लहे ना मेल, मन बैरागी कर वस सच भय राता होए। ज्ञान महारस पूग वै बौड़ भूख ना होए, नानक्यो मन मार मिल भी फिर दुख ना होए। श्री राग महला पहला। यो मनो मूर्ख लोभिया लोभे लगा लोभान, शब्द ना पीजे सागता दुरमत आवन जान। साधु सतगुर जे मिले ता पाइये गुणी निधान। मन रे हो मैं छोड़ गुमान, हर गुर सरवर सेव तू पावें दरगे मान। राम नाम जप दिन सुरात, गुरमुखर तन जान। सब रस हर रस सब सोखा रस भोगने, संत सभा मिल ज्ञान। नित ऐन स्वर प्रभ सेविया, सतगुर दिया नाम। कूकर कूड कमाई है गुर निंदा पचे पचान। परमे भूला दुख कणो जा मार करे खुलहान, मनमुख सुख ना पाइये गुरमुख सुख सुभान। एथे ढंड पिटाइए सच लिखत प्रवान हर।

रंगला सखिए मेरा लाल नेत्र वे सुहागनी देख मारा हाल प्रणय नानक बेनती तू सरवर तू हंस है कौल तू है कविया तू है आपे वेख विगस श्री राग महला पहला करती जा इहो तन धरती बीज कर्मा करो सल ले पाहु सारंग पानी मन किर सान हरदे जुमाए लय इउ पावस पद निर्वाणी काहे गर्भ स मूड़े माया पित सुत सगल काल तर माता तेरे होय नंत सखाया राम बिखे बिकार दुष्ट किरखा करे इन तज आत्मे हुए त्याई जप तब संयम हुए जब राखे कमल बिकसे मद आसरमा बीसार बासरो संग्रह तीन खोड़ा नित काल सरे दस अठारवे परम्परो चीन कहे नानक इव एक तारे श्री राग महला पहला कर तीजा अमल कर धरती बीज शब्द कर सच की आब नित दे पानी होए किरसान ईमान जुमाए लै पिस्ता दोचक मूड़े एव जानी मत जान सह गली पाया माल कै माने रूप की शोभा इत विधि जन्म गवाया राव ऐब तन चीकड़ो है मन मिडको कमल की सार नहीं मूल पाई भौर उस्ताद नित भाख्या बोलै क्यों बुझे जा नह बुझाई आखण सुनना पौन की बाणी अमृता माया खसम की नदर दिले पसंदे जिनी कर एक त्याया ती कर रखे पंच कर साथी नाउ सितान मत कट जाई नानक आखे राहे पै चलना माल धन कित को संजाही श्री राग महला पहला घर चौथा सोई मौला जिन जग मौलिया हरिया किया संसारू आब खाक जिन बंद रहाई धन सृजनहारु मरना मुला मरना पी करदारों डरना रहा ता तू मुला ता तू काजी जाने नाम खुदाई जे बो तेरा पढ़िया होवे को रहे ना भरिए पाई सोई काजी जिन आब तजैक नाम किया आधार हो पियो सी जाय न जासी सच्चा सृजनहार पांज वक्त नवाज गुजारे पढ़े कतीब कुरान नानक आखे गुर सदी रहो पीना खाना श्री राग महला पहला घर चौथा एक सुवान दोए सुवानी नाल भलके भौंके सदा बेआल कूड़ छुरा मुठा मरदार धन गुरू ब्राह करतार मैं पत की पंद न करनी की कार आओ बिगड़े रूप रहा बिकराल तेरा एक नाम तारे संसार मैं हायास एहूं आधार रा मुख निंदा आखा दिन रात पर कर जो ही नीच सनात काम क्रोध तन वसे चंडाल तान क्रूप रा करतार भाई सुरत मलुकी वेसा ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता भार तानक रूप रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर क्या मो देसा दुष्ट चोर नानका नीच कहे विचार तानक रूप रहा करतार श्री राग महला पहला कर चौथा एका सुरत जेते है जी सुरत वे होना कोई ना की जेही सुरत तेहा तिन राहु लिख एको आबु जाओ काहे जी करे चतुराई लेवै देवे ढिल न पाई राहु तेरे जी जी आंका तोहे कित को साहिब आवे रोहे जे तू साहिब आवे रोहे तू ओना का तेरे ओहे असी बोल बगाड़ बगाड़े बोल तू नदरी अंदर तोलै तोला जय करनी तै पूरी मत करनी बाजों घटे घट प्रणत नानक ज्ञानी कैसा होए आ पिछाने बूझे सोए गुरप्रसाद करे भी चार सौ ज्ञानी दरगे प्रवान श्री राग महला पहला घर चौथा तू दरियाओ दाना बिना मैं मछली कैसे अंत लहा जय जय देखा तै तै तू है तुझ त

हर भगत हर का प्यार है। जे गुरमुख करे विचार पाखंड भगत ना हुवई दुबदा बोल खुवार। सो जन रलाया ना रले जिस अंतर विवेक विचार। सो सेवक राखिए जो हर राखी उरतार। मन तन सौंपे आगे धरे होमे विचो मार। धन गुरमुख सो प्रवान है जे कदे न आवे हार। कर मिले ता पाइए बिन करमा पाया ना जाए। लख चौरासी तरस दे जिस मेले

तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कने कोई न जाने तुमराय।

जी की फतेह। सो गुरु प्यारी साध संग जी, इस वेले सतगुरु ने रहमत की है जो कि लड़का भाई भुपिंदर जीत सिंह बल और लड़की प्राची कुमार उन्होंने आनंद कार्ज संपूर्ण होए हैं। सो कोटानकोट धनवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी होना दा, जिन्होंने साखी रूप हो करके कार्ज जो संपूर्ण किए हैं। सो दास वालों मैनेजमेंट कमेटी वालों दोनों ही परिवारों नूं लख लख वधाई। सो आईया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। हुण जो साडे कोले सत्कारयोग ढाडी भाई ज्ञानी पूर्ण सिंह जी अरशी अमृतसर वाले उन्हां दा ढाडी जथा पहुंचिया है, 10 मिनट वास्ते सुपाल जोड़ी नूं वधाई दे रूप विच जो अपनी एक वंदना कहणगे। सो उस तों बाद समाप्ति है जी, नाल ही सुपाल जोड़ी नूं सिरोपा दित्ता जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।